भाई कहीं में एक क्या वो ऐसा का वाड़ा हूँ मैं तो मैं तो एक क्या सी यानी कोई बाहर आवाज़ है।